0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: अगोरा चेहरा। बेहतरीन नताइज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस।
1: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक, न्यू हेयर ग्रोथ, खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, फालिज के मरीजों और हर कस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर कस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 0345923 2860।
0: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करदा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील, मुहासे, छाइयां और आंखों के गिर स्याह हल्के खत्म करे, आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजूद असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नताइज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345923।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: سارا دا سدی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دپا

आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बडग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: या भाई छिमावा किया जा कहे आईमा हम पे अड़ जाके अन्या या भाई या भाई हां भाई रागली तो मंगसर आ भाई होई छी मां बके नहीं आदे बोली ना भाई तबे किस पर स्टार्ट किया दो मोखो जा खैर देन रने रे शिवी गना
1: या बच्चे अबे बकबल काल कवि माँ बकिया जो वक्त जल कुछ ये माँ बक्के वाले नया जैसे अबे बकिया जे
0: आज तो दिल खड़े वाले कबाबा हुई माँ बकिया द कबूई माँ बकिया द का
2: नारे वहम पसुरा कुर्बान दस्तर गुतुरा
0: या सजा गया सजा ही माँ अखिल ये ऊपर जो वाले कम सजा जो वाले क्या गया सच जाया ने मुझे आज जत कबाब आके दे

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: ये चढ़ू अल्लाह जी फमंग खुदाई रखूंगी
1: हेलो नन मरा तो दावे चे जमंग द पटाग्राम द खलको द टोल न ज्यादा खुशहाली सी भी अगर डिजिटल खुशहाली ची वर्तवाई दह मरा तो नन वाय हाँ गप शप होंगे दोस्ता सो मैसेज कॉल में शामिल हो ठोके टकाले मिंग तब टेम रखोए कॉल में कहोए चीज जमुन प्रोग्राम तासो कुम कुम से क्या हो रहे जमुन कमांडो कुम कुम मोर्चों ना नास्ती और प्रोग्राम सुम रखो कभी तासो द टोल डेरा मने ना जक ची दा प्रोग्राम तास्तो लवांदी कभी सिफात कॉस्मेटिक पाकिस्तान और माँ गरीब तबेले शी निजाम सईद आरजे निजाम सईद दादे पे मटसी शारिय चार रेडियो मन बटाग्राम खोला द बटाग्राम मिनावालो शर्तम मजे मंसरो सही

0: काशी चल ले हा जनवरी ले लो बाजी गर्दना।
1: सलाम वालेकुम निजाम भाई पखेर राले प्रोग्राम जबरदस्त है जमल खान है वहाँ भाई तो सिंह है शुक्र देखे मता सुखे खुशहाल हो सी।

0: हाँ जी सासू कॉल ज्यादा करेंगे सासू मैसेज डाउन द प्रोग्राम पर खाली कॉल तो जरूर सर कॉल उनके बल सकते हो अच्छा धन्यवाद अस्सलाम वालेकुम अबू मोहम्मद प्रोग्राम केयर करे सड़े में शिपा करा लेदर तवायो
1: डेरा मन्ना बस सिंह जी
0: खैर खैर ते सासू दुआ करे दा सख पलो वेदा सुखे
1: खैर जी अल्लाह शुक्र बस तबीयत में खराब है सर के दर्द है
0: ओहो बस तासू ची बिरयानी ने खरेन बेदा का चली
1: भले
0: दामा पता रही खुशबू इधर तरह रसी खुशबू एम तरह
1: रसी न
0: जी दाकत थे अगम शुरू
1: ना
0: दाकत दामा पता लगे था सुने बिरयानी खड़ ले था नो बस तासो सर से वही बस जमा जड़ दा वही सुन बिरयानी खड़ ले था खैर खरे दवा तो वो गेम आसान देखे करान दे
1: गेम आसान दे
0: आसान देखे ना आयु का कम जबरदस्त अंदाज क्यों ना
1: आयु का हो माशाल्लाह हो
0: खिलाड़ी देखे ना
1: सीनियर प्लेयर
0: दे आओ के ना बेहतरीन अंदाज होगा बिल्कुल पहचाने बस अपने समझते वक्त लगा उसी
1: जी
0: जी अबू मोहम्मद इसका खुदा सवाल है ना
1: जी सबको ट्राई को मुझे मायूस किया जाता प्रे खेद माशाल्लाह अगर जी कम अंदाज की कर देगा ना फाइनल हकदार जी हाँ
0: बस टीम जबर वाले नहीं दे बिल्कुल दुखी नहीं थी अगर जरा वो दिशी भी थी
1: दा तेरे प्रोग्राम हम और दीजिए क्या अच्छा कटो लो अगर नमक नहीं मुझे बेतोड़ा और कड़ो शिकस का ना
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जमा ख्याल जिन बेतोड़ा कह रहा
0: हो पता लगी ना टाइम स्टडी के दे शगी पे राशि
1: उस्ताद
0: हलक ना स्टूडेंट हाजरी
1: करता
0: स्कूल डायलॉग्स अलग बहाने जुड़ेगा ना सर जी पर फलान की उदास उछलो उछलो ना बहाने जुड़े तो दरखास्त ने दिली के लिए खाल बदे करो दरखास्त बदली करो लिहाजा दादा शीज ने देख लिहाजा जुर्माना चिकम अदा कर लेगी था पता ना था स्कूल रूल्स दी चले जी थ्री टू वन एंड गो
1: मत पास पर स्कूल वाले तरुण बीमार हो मजा तबियत खराब नो विद्यालय अस्पताल तो बोतलो माले तो टीके लगोले वा अद्या जमा सर मन डेर दड़ो जो खोर तरा ना मजी दिया ना वक्त मो
0: जबरदस्त मुकाबला करे था खुशहाल

0: हेलो
1: जी जी जी भाई बिल्कुल वही दस जारी से खबर दस बिल्कुल खबर जारी से आवाज राजी
0: कब चेक कर ले लास्ट तुम कोटी अंदर कितन दे तो ले सामान होया मोबाइल में कट टी शर्ट अरे तो तीन सामान होया क्या मोबाइल में कट हेलो
1: जी जी हां तो वही वही जबरदस्त
0: जबरदस्त जबरदस्त हम बकवाल निकले कैसी कोर्ट के पास सुविधा
1: जबरदस्त बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ढेर जबरदस्त अब्दुल रहमान पूरे 40 पॉइंट तो मिला खड़े रहते मन को पहला

हाँ हाँ जी, उस मुकाबला जबरदस्त शिविर था ना, उस मुकाबला जबरदस्त था। तेने वजह से समय से जुदा हूँ प्रोग्राम पर खाली बल में से जाकर दिवाई ची विदा खुशम मजा था जहुम काल तराजम बिल्कुल दस काल का बोले शे विदा खंडा नमरिश्तो वाकई के ना नमरिश दस नो खाने मरा बल में से जाकर दिवाई ची ताज में सो खुशम नाइस था خاندان ڈکا آئی ایم نایاب نایاب سس ڈیرے سے من نا شوتا سے کھلے گی نا بس ما کچھ نہ کہہ دے شوتا سے زبردست ہو لگے

0: हाँ हाँ जी कॉल सर अरवानी कॉल आपने गुरु पलायन मैंने मुझसे कॉल कौन की सुगदी जी नाम कमजे नदी असलाम वालेकुम वालेकुम असलम माहा बिल्कुल मैं हाथ सुबह कॉल को भी करेंगे फेसबुक कॉल कैसे दे सर कम चार पॉइंट ज्यादा रख लगा फाइनल तो क्वालिफाई कई अगर तरफ ना क्वाइब का कर दे क्वालिफाई का ना सही था किरदार है
1: दीवाली
0: आओ का नाम

0: बिल्कुल जनाब अकाल तख्त से गुरु मुसरा काल कौन के सुख दे आओ तो चेतन दे अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम खैर आज ताई खान
0: खैर खरती आयु का गड़ा सुख है किरदार टमाटर प्राथ दी कम आओ दे के दगे गाहे कर आगे लगा उस बल्कि डायलॉग्स थे अगत असलम दूल दी नो जैसा रेडी के थ्री टू जबरदस्त पूरा 50 पॉइंट तो मिला विषय दे फाइनल क्यों मैं आयु का डेरे से मन को खुशहाल रहा दोस्तों जी ओके भाला हाफिज हाँ हाँ जी माँ कास गवे उस